टोलों से भी चाहूंगी। और हमारे मैं नाच फनकार इंतजार साफरी साहब आपसे और आपके तमाम पार्टी वालों से मैं चाहूंगी। और मैं अपने पार्टी वालों से भी चाहूंगी, लीजिए हजरत नाते रसूल की चंद कथा पर आप लोगों से तवज्जो चाहूंगी, सभी लोगों से जितने भी कमेटी के लोग हैं।